ताने ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क्यों ताने क